0: बात जो है ना,
1: गाड़ी हिंदुन हाथे चेहे अडो समुथे गिंदवानी द्विहराज जेगड़ू।

0: आज मैं रिकॉर्डिंग अगले फर्स्ट मिनट में दिव्य राज्य के रोल में तिब्बे फिर मैं गणेश देने तिब्बे फिर उनके रिक्वेस्ट ला तफात उनके तो मैं तफात ला रहा हूँ
1: लावा कोई बापा दालो वे
0: दालो वे मैं हर बन गया तो कि बेफिर हम एक दोस्त और मैं ना रिक्वेस्ट आड़ो फोन वाला व्यक्ति आड़ो सवाल बार इतना होता देता
1: अगर फर्स्ट मिनट हिंगे आर्गुमेंट

0: 있어.
1: 라베 라미즈 미리타야라 나코 아살라이쿰. 케네 하라발.
2: 와라라가.
1: 키게 포리하마난 키게 키아네.
2: 나코 피스나가로나.
1: 뎅에 포리하마난 메누네 나코 야케. 나시다.
2: 나코라가로나.
1: 나시다 타 키아네.
2: 나시다 나후마 키아네.
1: 나후마.
2: 어.
1: 나우마 나 나후마타 나우마타.
2: 나후마.
1: 나후마.
2: आले
1: एम में नाको वे हमें आती दो
2: नाको
1: अहम बने ए गेम ही हूं किया गत्ता
2: की गतो
1: गेम ही हूं किया गत्ते
2: आ हमको किया ने नाको
1: अहम तो आ
2: असल हमें इस गेम में बड़ फैन की मामे अलगण
1: वे अहम तो बने मामे अलगण वे सदा
2: मामा मेरी कह रे गाडो हां
1: खबा मामा मामा तो दिबे बाहर दकाला मामा को बाकी ने हाल हवाल
3: रंगल कमले को हालो को आलो आमे कमरे को
1: एहन तो हा रंगले वर बड़ शुक्रिया
3: कमले को वदन अबतु अबतु आंग दिवस आदो हा
1: बराबर वरंग फावे जेंगे
3: ए हर वर रे बेन सिया उरे उरे उरे मजी फार फोनो अब तक दे दे दे
1: दे मे प्रोग्राम अस्तो मेरला
3: एमेरिटा
1: मिया दे हफ्ते को देरे फोन में
3: लबा
1: प्रोग्राम तक एक हुट्टा दाखन जेन एरो के हदर कम का बान मिवर रंगण ही बने गे हिंगा कोबा ना को
2: आरे कुरिया
1: हां कुरिया दाम बे
2: आरे आरे
1: निहार मेती सवाल बा जी फंगे
2: आरे
1: वरक हिंगा सवाल में होना ने कमा देते विष्णुचे
2: मामा वाला मड़वाने तो
1: हैं तो बने
3: मामा
2: को मेरे काट गया मामा को मेरे को पर गया
1: मड़वाने में हैं तो मामा क्या जवाब न तैयार होना आती इंगे फुरता मसवाल इंगे फुरता मसवाल की तिबा आहरे वट्टा लाये फिर न आहरे खुदी को दीवान आड़ो क्या रंगला तिबा आहरे वट्टा लाये फिर न आहरे खुदी को दीवान नमावेस मारा बादादा हिनितुम वेले फिर न हम हिनितुम तिबा एवस मगे फरातुन दिबि गेंदान
3: मम्मी का
1: की के
3: लो
1: बराबर गे बराबर
3: मिकी मी हे पे कर अलका से आडू हे में
1: आडू हे आ बेजे मसदेन
3: लब लब
1: आ
3: रोगन मन में रोगन
1: आ मसेन हे में देवन स्वाद में दने
3: लब
1: देवन स्वाद आहरेंगे दत्ते बेबे नहुरे एकम को आहरेंगे गातु मेरे कुज्जा की आहरेंगे बाप्पा के दरिये के कुज्जे मी कुज्जा की मगे काक आहरेंगे दत्ते बेबे नहुरे एकम को आहरें गातु का मेरे कुज्जा की आहरेंगे बाप्पा के दरिये के कुज्जे के मी कुज्जा की आहरेंगे काकु है
2: बाप्पा के दरिये
1: आहरें बेबे बस दाते बस नहुरे कोके बस नहुरे एकम को आहरें क्या रे मेरा कुड़ा कुज्जा की आहरें बाप्पा के दरिये के कुज्जे के हमें मगे काकं हैं मिवान मैं कौन कुज्जे के मगे
2: मगे दरिये को वाल
1: यागिंग बराब बराब
2: ठीक है फिरी बस सारे कोन में सो जाप देने में
1: ऐं तो बने
3: अब कोबे अलकुले में
1: आह दिन रे को मिलने नो दिबे नहीं के दिन रे को बराबर से मैं नोट कॉपी नाक पे आदमी आया तो कुरे मन दसवाद बस दन निमोने
2: ಬರಾಬರು
1: लब्बे मामा
2: थैंक यू वाला बड़ा
1: कौन लवे गिनस देने
2: कोला की दलो रिक्वेस्ट कोला
1: फाइन हास कोला ने काका
2: हास कोला ने काका मामा काका हास कोला
1: तेरे मामा बोले
3: बोले रट्टे मैं हास को देते टीम
1: वर बड़ा शुक्रिया टीम के फरातो ऑल में फरातो मामे वर बड़ा शुक्रिया वर बाज रे के
2: थैंक यू वर बड़ा
1: बाकी वेला नहीं गया तो कुरंगी दे दो अल बाल माता दे दो लव यू बाकी ने तो बने